0: राजेश खन्ना की एक और सुपरहिट फिल्म थी अपना देश। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना का सितारा सातवें आसमान पर था। वो जिस फिल्म में भी काम करते थे वो उनके नाम से ही हिट हो जाती थी। इसी फिल्म का एक गीत सुनिए जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं R.D. बर्मन।
1: गजरा लगा के, गजरा सजा के,

0: More great music ahead. Keep listening to Sina Radio. Sina Radio.
1: यशराज फिल्म की यश चोपड़ा निर्देशित फिल्म थी दिल तो पागल है। इस फिल्म ने सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए थे, साथ ही इस फिल्म ने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। फिल्म के हीरो शाहरुख खान और हीरोइन माधुरी दीक्षित को जहां बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे, वहीं करिश्मा कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के साथ ही मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड। इसी फिल्म का ये गीत हम आपके लिए लाए हैं, जिसे गा रहे हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर।

दिव्या भारती की कुछ फिल्मों में से एक फिल्म थी विश्वात्मा। फिल्म में दिव्या भारती के साथ थे सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम और नसीरुद्दीन शाह। इसी फिल्म का ये गीत सुनिए जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार बीजू शाह के संगीत निर्देशन में गाया है साधना सरगम ने। सीना रेडियो सारा दिन सारी रात, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका हम सफर निहिर जोशी।

0: Always playing music for you, diverse and multicultural Sina Radio.
1: फिल्म 1942 अलव स्टोरी का संगीत बहुत कर्णप्रिय था। यह संगीत था आर डी बर्मन का, जिनकी ये आखिरी फिल्म थी। और अपनी इस आखिरी फिल्म में आर डी ने वो कमाल दिखाया था कि संगीत प्रेमी चमत्कृत हो गए थे। इस फिल्म का ये गीत है कविता कृष्णामूर्ति के स्वर में। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

यश चोपड़ा के अपने यशराज फिल्म के बैनर तले पहली फिल्म थी दाग। इस फिल्म के नायक थे राजेश खन्ना। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी फिल्म का ये गीत सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: Windsor and Detroit. This is Ethnic 102.3 FM. Sino Radio.
1: दबंग सन 2010 की सबसे हिट फिल्म थी, न केवल इस वर्ष की बल्कि दबंग की गिनती होती है बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में। इस फिल्म में संगीत दिया था साजिद वाजिद ने, लेकिन इस फिल्म का जो गीत सबसे अधिक हिट हुआ था उसका संगीत साजिद वाजिद ने नहीं बल्कि ललित पंडित ने दिया था। और गीत तो आप जान ही गए होंगे।

निर्देशक डेविड धवन जाने जाते हैं हास्य और मनोरंजक फिल्में बनाने के लिए। इन्हीं के निर्देशन में बनी फिल्म थी मुझसे शादी करोगी। इसी फिल्म का ये गीत सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत साजिद वाजिद का है।

0: take us with you everywhere. On air and online, 102.3 FM, Sina Radio, and CINAFM.com, Windsor Detroit's multicultural voice.
1: फिल्म तीसरी मंजिल एक संगीतमय सस्पेंस फिल्म थी। इस फिल्म के सभी गीत हिट थे और इस फिल्म का हिट संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। इसी फिल्म से आरडी बर्मन ने सफलता के शिखर को छुआ था। इस फिल्म का सबसे मधुर गीत सुनिए, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

फिल्म ज्वेल थीफ एक सस्पेंस फिल्म थी। फिल्म का खूबसूरत संगीत दिया था संगीतकार एस डी बर्मन ने। इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो दिल की बात कहता है। बात दिल की चली है तो हमारा कहना है कि दिल की गहराइयों का राज किसी से न कहो, आज जो दोस्त है दुश्मन कभी हो सकता है। ये तो थी दिल की बात, और अब सुनिए बेचारे दिल का ये गीत।

0: Keep it tuned to 102.3 FM Sina Radio, Windsor, Detroit's multicultural voice.
1: एस पी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म साजन का गीत सुनिए। इस फिल्म का मधुर संगीत था नदीम श्रवण का, जिन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लीजिए सुनिए ये मधुर गीत।

हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, ये कह रहे हैं बॉबी देओल अपनी नायिका ट्विंकल खन्ना से फिल्म बरसात में। इस गीत में आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीतकार हैं नदीम श्रवण। आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: More great music ahead. Keep listening to Sina Radio.
1: Sina Radio.
2: Sina Radio, सारा दिन, सारी रात आपके साथ हूँ मैं, आपका दोस्त निहिर जोशी, मन भावन गीतों के साथ। अनु मलिक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में पहचाने जाते हैं, पर वो गाते भी हैं और अच्छा गाते हैं। अब फिल्म जानम समझा करो के इस गीत को ही ले लीजिए, जिसे हेमा सरदेसाई के साथ गाया है अनु मलिक ने। और बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बताए देते हैं कि संगीत भी अनु मलिक का ही है।

0: Have something to say? Find us on Facebook and leave us your comments. Cena Radio, 102.3 FM. Cena Radio.
1: फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बड़े मियाँ थे अमिताभ बच्चन और छोटे मियाँ थे गोविंदा। डेविड धवन की इस मनोरंजक फिल्म में एक विशेष भूमिका निभाई थी माधुरी दीक्षित ने, जिनके साथ अमिताभ बच्चन और गोविंदा पर ये मनोरंजक गीत फिल्माया गया था। इस गीत को गाया था अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार ने। संगीतकार थे बीजू शाह। तो आइए हम भी सुनते हैं ये गीत।

सीना रेडियो सारा दिन सारी रात आप सुन रहे हैं ये मधुर मधुर गीत निहिर जोशी के साथ। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म थी ओंकारा। इस फिल्म का गीत संगीत कुछ अलग कुछ हटकर था। फिल्म के गीत लिखे थे गुलजार ने और संगीत दिया था विशाल भारद्वाज ने।

0: take us with you everywhere. On air and online, 102.3 FM, Sina Radio, and CINAFM.com, Windsor Detroit's multicultural voice.
1: मधुर भंडारकर अपनी हर फिल्म में कुछ अलग ही लेकर आते हैं। उनकी फिल्म फैशन भी कुछ ऐसी ही थी। इस फिल्म की नायिका थीं प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर और नेशनल फिल्म अवार्ड दोनों ही प्राप्त हुए थे। इसी फिल्म फैशन का ये गीत सुनिए, मोहित चौहान और नेहा भसीन से। संगीत सलीम सुलेमान का है।

शाहरुख खान को स्टार बनाने वाली फिल्म थी बाजीगर। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया था अनु मलिक ने। इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था शाहरुख खान को, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड अनु मलिक को और बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था कुमार सानू को। तो आइए सुनते हैं कुमार सानू और अनु मलिक का गाया फिल्म बाजीगर का ये गीत।